0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: रास्ता।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: लो जी तुहाडी नजर है बोला
1: ओए भोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए टू

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2। यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
6: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
3: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हास्य मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
7: पोले ने कसूते फसाते।
3: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू। यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
8: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
3: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-466 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू। यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
6: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice।

0: खाली होने ना।
1: नहीं, मैं इतना जो नहीं है मैं उसकी इतना नहीं सोचता
2: जी,
1: मैं जो है उसी में खुश हूँ।
2: नहीं तो ही किदा फिट कर दे, इफ इफ नु किदा फिट कर दे अपनी लाइफ च?
1: इफ आई वेरी रेयरली इफ इफ आई हैड अ
2: वाइफ
1: वाइफ और द गर्लफ्रेंड देन आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड एंड मेक ब्लॉग्स एंड एंजॉय माय रिटायर्ड लाइफ।
0: तो गर्लफ्रेंड वाइफ क्या वो कैमरा पकड़ती और तो आप भी कले भी एंजॉय कर सकते?
2: नहीं, ये सोटी ले लेंदे ना, ये सोटी ले लेंदे स्टिक दे नाल दोवें जाने बनाउंदे, तो
0: अकेले भी जा सकते हैं?
2: नहीं अकेले नहीं ना, फिर
1: मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूं, मैं पार्टनर्स हमेशा
0: सर
1: झुंड में घूमना,
0: रिचर्ड
1: जी मैं नहीं हूं कि अकेला घूमूं।
0: रिचर्ड जी यकीन करो, अगर गर्लफ्रेंड या वाइफ होती ना आप एयरपोर्ट पे झगड़ के वापस आ जाते।
2: नहीं रिचर्ड जी मैं आपको एक आइडिया दूंगा आपको
0: जी।
1: हाँ जी,
2: आप अकेले निकलो और आपका जो थीम है ना आपका वो ब्लॉगिंग का जो भी होता है वो यही होना चाहिए कि मैं पार्टनर ढूंढने निकला हूं।
0: हो सकता है वो दूसरी मोड़ पे वो इंतजार कर रही हो और आप जा ही नहीं रहे।
2: हाँ, तो आप उसकी प्रमोशन ही ऐसे करो कि मैं पार्टनर ढूंढने निकला हूँ, आज मैं इस कंट्री में आ रहा हूँ, इस सिटी में आ रहा हूँ, तो मैं मुझे पार्टनर चाहिए।
0: जी जी जी,
2: इन सर्च ऑफ पार्टनर। तो अब उसी है ना, तो ये आपको देखो दोनों में से एक काम तो होगा ही ना। लोग मसाला बांधते हैं, लोग यही देखेंगे कि हाँ ढूंढ। थैंक यू।
1: मैं 3 साल से तो घूम ही रहा हूँ, काफी घूमा है।
2: नहीं आप उसको टैग दे दो ना कि मैं
1: टैग
2: हाँ मैं
1: बैड आइडिया।
2: हाँ, तो मैं पार्टनर ढूंढने के लिए निकला हूँ,
0: फर्स्ट एड फ्रॉम लाइफ।
2: तो लोग आपको देखेंगे कि इस सिटी में हुआ है मसला हल के नहीं, इस शहर में, इस सिटी में, इस देश में, तो बस चलता रहेगा
0: और जहां मिल जाए वापिस आ जाना। ये ना भी हर देश में जाते रहो, एक एक पकड़ते रहो। काफिला नहीं बनाना है, हमने फैमिली बनानी है।
2: ये दूर साहब आइडिया इदा का भी जिथे मिल गया उत्थे इन्हों का वो वाला सफर तो खत्म हो जाए।
0: अब मेरे हिसाब से चलो आप।
2: हाँ, अब ढूंढ के जाने की बजाय आप ऐसे निकलो ढूंढने के लिए।
1: That's not a bad idea.
2: है ना?
0: सी
2: सोटी थोड़ी सी लंबी ले लेना।
1: गाय ऑल्सो जस्ट जो 5 गुरुद्वारे में घूम रहे हैं, इज अमेजिंग।
2: कौन?
0: यस यस यस,
1: एक लड़का जस, है पंजाब, ही इज ट्रैवलिंग जस्सा,
0: जस्सा
1: गोसल, ही इज गोइंग टू 5 गुरुद्वारा बाय वॉकिंग।
0: बाय वॉकिंग
1: अभी 7 महीने से चल रहे वो।
2: ओके
0: जी जी,
1: एंड नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया वो।
2: ओके
1: सिक्किम तक पहुंच गया तब जाके मुझे पता चला। हाँ,
2: नहीं 5 तख्तां से जा रहे हैं,
0: 5 तख्तां से पैदल जा रहे
1: हैं। हाँ जी, 5 तख्तां से जा रहे हैं वो।
2: ओके ओके,
0: नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रहने वाले हैं बड़ा अच्छा उसका प्यार मिल रहा है। बड़े लोग प्यार कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। बड़ी हॉस्पिटैलिटी जो है ना उस साइड के लोगों की बड़ी अच्छी है।
2: गुड,
0: वेरी नाइस।
1: आई डिड नॉट नो कि इतने सारे 5 तख्त वहाँ पे भी है।
0: नहीं वहाँ पे नहीं है जी, पूरे हिंदुस्तान में 5 तख्त
2: अलग अलग जगह पे।
0: अगर वो बिहार की साइड में गया उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी गुरु साहिबान के लिए जहाँ जहाँ गए हैं गुरु नानक देव जी और जो भी हमारे दूसरे गुरु साहिबान, जहाँ पे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं वो उनके भी दर्शन कर रहा है।
1: गुड,
0: तो आप तो प्लेन से जा रहे हो ना? आप भी पैदल जाओगे ढूंढने? आप भी ढूंढने पैदल जाओगे?
1: प्लेन से जाओगे? जवाब दे दिया
2: नहीं। तो अब आप सिटी टू सिटी जाओगे या आप अलग अलग कंट्रीज में जाओगे?
1: कंट्रीज आई जब भी मैं जैसे आई बीन टू 89 कंट्रीज बट आई जनरली गो टू द कंट्री साइड आई क्योंकि सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर द सेम एट द एंड ऑफ द डे।
2: सही,
1: मुझे खाली लैंग्वेज फर्क होता है बट बिल्डिंग्स और लाइट वगैरह, तो मैं कंट्री साइड ही जाता हूँ। वहां मुझे असली लोग मिलते हैं, असली खाना को मिलता है, असली मतलब कल्चर को मिलता है। तो या
2: गुड, तो अगर आप इतने देश ना घूमे होते तो क्या होता? इफ इफ व्हाट इफ
1: पता नहीं, फिर मैं कोई सरकारी काम कर रहा होता बाबू बन के डेस्क के पीछे।
2: नहीं, को फर्क पड़ता लाइफ पे?
1: नो आई पता नहीं, बट आई तो एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट।
2: नहीं कोई फर्क, अगर हो सकता है आप घर पे बैठ के आप वैसे भी एंजॉय कर लेते।
1: नहीं नहीं नहीं

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: बोला
1: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए पोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए टू

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: लाओ जी तुहाडी नजर है भोला।
3: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
6: भोले ने कसूते फसाते।
3: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरा विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2
7: भोला भाई।
8: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
9: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर। रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

बराबरी रही। साउदी अरब ते यूरुग्वाए दे मैच दे विच एक एक दी बराबरी रही है। दस दिए कि हाल फिलहाल स्थिति यह है कि ग्रुप ए दे विच मैक्सीको ते साउथ कोरिया दोवें एक एक मैच जित के सिखर दे उत्ते ने। उधर ग्रुप बी दे विच स्विट्जरलैंड ते कैनेडा दोहां दे मैच जिहड़े ड्रॉ होए ने, इस करके दोए हाले कतर ते बोजनिया हर्जोगोविना दे बराबर अंक रख रहे ने। ग्रुप सी दे विच स्कॉटलैंड ते मैक्सीको दे उत्ते काफ़ी दारोमदार रहेगा, माफ करना ब्राज़ील ते मरक्को दे दरमियान काफ़ी दारोमदार रहेगा। उधर ग्रुप डी दे विच आस्ट्रेलिया दे नाल अमरीका इस वक्त सिखरले दो स्थानां दे उत्ते ने। दोवां टीमां ने तुर्की ते पैरागुए नूं हराया है। ग्रुप ई च जर्मनी ते आइवरी कोस्ट जिहड़े ने फिलहाल टॉप कर रहे ने, और ग्रुप एफ दे विच स्वीडन ते जापान ये जिहड़े ने फिलहाल उपर टॉप ते चल रहे ने। ते ग्रुप जी दे विच न्यूजीलैंड ते ईरान जिन्हां दा मैच होया, हालांकि ये गल कही जा रही थी कि ईरान के सारे मैचों के उत्ते अमरीकी मीडिया की नज़र होएगी। उधर ग्रुप एच के यूरुग्वाए ते साउदी अरब जड़े ने वो इस वक्त टॉप के उत्ते ने। फ्रांस ते सैनेगल का मैच हले होना है और काफ़ी दिलचस्प मैच होना है। मुकदी गल कि ग्रुप आई जे ते जड़ा ग्रुप के है इन्हों के मैच हाले, ग्रुप के ते एल इन्हों के मैच हाले होने बाकी ने, ते फिर बाद दे विच जिहड़ी ग्रुप की स्थिति है वो काफ़ी हद तक स्पष्ट हो सकेगी। खबरां दे अज दे इस बुलेटिन दे विच फिलहाल नहीं दिओ इजाजत, धन्नवाद सुनदे रहो रेडियो हांजी 1674 AM।

रेडियो हांजी 1674 एम ते मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लेके हुआ हां सर। दो रिपोर्टां अज दे दिन जिन्हां दा जिक्र करना है, जिन्हां दे उत्ते गल करनी है। एक तां ईरान ते अमरीका दे विच डील हुई है, समझौता होया है। सुनन दे विच हैरानी हो रही है कि जदों लड़ाई हुई सी तां तीन जने सी, जदों समझौता होया तां दो जने रह गए ने, तीजा कित्थे है? उहदा जिक्र अज दी रिपोर्ट च करांगे। ते इस दे विच बाकी कित्थे ने, यानी कि अमरीका का की बनू, आस्ट्रेलिया का की बनू, भारत का की बनू। अमरीका का तो चलो खैर जो बनू सो बनू, भारत आस्ट्रेलिया के हवाले के नाल भी गल करांगे। एक यही रिपोर्ट, तो दूजी रिपोर्ट जिहड़ी अकाल तख्त साहब की फसील तो फरमान जारी हो कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे जिहड़ा वह ना मनिया जाए तो गुरु दुखी करार दिता गया है। वो तो बाद मुख्यमंत्री दी की टिप्पणी आई है, प्लस ये नाल अकाल तख्त साहब दा जिहड़ा ये फरमान हुंदा है किस तरीके दे नाल लागू हुंदा है, सिखां दे तख्तां दा संकल्प की है, और की इस जिदा अदालतां दे विच हेठली अदालत दे हुक्म नूं उपरली दे विच जां फिर क्रॉस अदालतां दे विच ये लैके जाया जा सकदा कि अकाल तख्त ते बाकी तख्तां दे विचकार फर्क हैगा कि अकाल तख्त दे हुक्म दे बारे जे कोई दूसरा तख्त कह दे उस नूं टालिया या बदलिया जा सकदा है, इहदे उत्ते भी गल करांगे। दो ऐसे मुद्दे जो वक्खो वक्खरे ने, हो सकदा है कि तुहानूं लगे कि सीधे तौर दे उत्ते साडा कोई संबंध है नहीं, पर फिर भी जिवें अगे भी इनसाइट रिपोर्ट दे विच किहा कि इह खबरां दे अंदर दी तह तक जाने की आप कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम दे विच। सो तुहाडा लेना देना सीधे तौर दे उत्ते होवे ना होवे, पर फिर भी यह जानकारियां हासिल कर लिया करो क्योंकि ये नाल फायदा ही होगा। वो कहने हैं कि सियाणियां दा कहा ते औले दा खादा मगरों पता लगता, इनसाइट रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही औले की तरह असर करेगी। आशा करते हैं शुरुआत अज्ज दे इस प्रोग्राम की। इनसाइट रिपोर्ट रेडियो हांजी 1674 एम ते।